0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौ, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
3: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
2: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
5: मै नै जाइ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
4: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामा लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार मिटवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाएं।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

0: मुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना, कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में, रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा टना भुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलतमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 17 गते, 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर कैलाली।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
5: टीकापुर नगरपालिका को सूचना। नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं।
6: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं।
5: यस टिकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा, बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौ।
6: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि यथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गरौं। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो
2: हजुर हो
0: महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कन्थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। अविरल पानी परल संगे बाढ़ पहिरो दुबान से देशभर के 21 जहन के मौत। बाढ़ पहिरो से 747 परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित। कमजोर बंदई न्यून चापे प्रणाली वर्षा रुकल संगे आज से घाम लगना मौसमवीद के कहाई। भारत के उत्तर प्रदेश में बाढ़ पहिरो में कमती में 56 जहन के मौत हो। दुर्गौली में कृषि हाट बजार संचालन होके कृषक उपभोक्ताओं के अंदर जहन थाए। आप पूरा खबर विफेक दिन से अविरल पानी परल संगे बाढ़ पहिरो दुबान मन से देशभरिक 21 जहन के मौत हुआ। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार कालिक सांसम विपद में पर्के 5 जने बेपत्ता हुईलो 5 जने घायल हुई बताइल बा। बाढ़ पहिरो से 747 परिवार में प्रत्यक्ष प्रभावित हुई बताया गया। बंगला के खाड़ी में उत्पन्न हुईलक न्यूनचापीय प्रणाली के कारण यह असोज 8 गति से लेके देश के तमाम भाग में भारी से लेके अति भारी वर्षा हुईलक ओर से 5-4 दिन में बाढ़ हो पहिरो के जोखिम रलक। प्रभावित जिला के करीब 2000 नागरिक उकरण सुरक्षित स्थान में सारगिल प्राधिकरण से जनायल बा। उद्धार करगिल व्यक्ति के लग समेत संबंधित जिला प्रशासन के समन्वय में करके स्थानीय तह में आवश्यक दस्तावेजीकरण तथा राहत के व्यवस्थापन करगिल बा। जाजरकोट के म्याग्दी उष्ट के बागलुंग लगायत के जिला में समेत हेलीकॉप्टर मार्फत बाढ़ पहिरो में फसल व्यक्ति उकरण के उद्धार करगिल प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति महर से जानकारी दिले बाटे। विपद में 143 घर पूर्ण रूप में ओ आंशिक रूप में समेत घर में क्षति पुगल बा। प्राधिकरण मन से समेत विपद के पूर्व तैयारी स्वरूप अग्रपंक्ति में खर्चिना सहित के 5000 से ढेर ओ समेत बाढ़ पूर्वानुमान में महाशाखा से संभावित बाढ़ प्रभावित स्थानीय बासिंदा उकरण 8,14,000 थो समेत एसएमएस मार्फत प्राधिकरण से समेत पठाइल जनागिल बा। 4 दिन मा समेत देशभर 186 स्टेशन हो 100 मिलीलीटर से ढेर समेत कुल वर्षा मापन करगिल बा। सबसे ढेर नवल प्रासी के बर्दघाट सुस्ता के समेत डेढ़ गांव में समेत 554.2 मिलीलीटर वर्षा मापन करगिल बा। उष्टक के कास्की के पंचसेमा समेत 500.2 मिलीलीटर औसक तनहू के अट्रैली तारमा समेत 472 मिलीलीटर वर्षा मापन करल बतागिल बा। यह असोज 9 गति से लगातार वर्षा कमजोर बनती गई बा। कालिक दोपहर से लेके न्यू चापीय प्रणाली विस्तार हे समेत धीरे से कमजोर बनती गई बतागिल बा। बंगला के खाड़ी मन से आये न्यून चापीय प्रणाली कमजोर बनती गैलक ओर से सामान्य सेफे समेत वर्षा भारी समेत पानी पड़ने संभावना भर कम रहल हो। समेत आज के सेफे समेत काल मौसम सफा हुईना मौसमविद बीनू महर्जन जानकारी दिले बाटे। रोगिल वर्षा संगे कर्णाली नदिया के बहाव फे घटल बा। कर्णाली नदिया में समेत पानी के सतह 8.49 मीटर पुगल बा। कलश रात के 8.90 मीटर पुगल रह। कर्णाली चिसा पानी में कर्णाली नदिया के पानी के सतह 10 मीटर समेत पुगना है। चेतावनी तह 10.80 मीटर पुगना है। खतरा के तह मानिल बा। बाजुरा अछाम जोड़ना प्रमुख राजमार्ग अंतर्गत चौखुट्टे मनसे समेत असाम और करीब 2.5 किलोमीटर समेत आगे भलता कहना स्थान में सड़क भाषगिल बा। सड़क भाषगिल पार से ऊ सड़क खंड में छोट सवारी साधन के सावधानी पूर्वक संचालन हुईती रहल बा। कल से भारी सवारी साधन के लक उच्च जोखिम में रहल बतागिल बा। सड़क भाषणा समेत क्रम चलती रहला ओर से थप जोखिम बढ़ सकना जनागिल बा। सड़क के अवस्था है मद्देनजर करती यात्रु तथा सवारी चालक उकरन यात्रा करबेर विशेष सतर्कता अपनाइना और सुरक्षित रहना अनुरोध करगिल बा। सड़क डिवीजन डोटी के कर्णवोगति से ऊ सड़क खंड में यात्रा करबेर सावधानी अपनाइना आग्रह करगिल बा। खोजखर मायघरी विश्राम विश्राम पाछ फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लग तो अवस्था सकि न सकी सब काम कर काम कर विदेश जानु के नगर्ने के जन्म पड़े जस्ते
2: जो राम पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह करें आपने वर्तमान भविष्य दुबे अन्योल में पारी 20 वर्ष मुनि हमी कसैले विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालय द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। असोज 8 गते से शुरू हुईलक निरंतर वर्षा के कारण गंडकी प्रदेश के तमाम जल विद्युत आयोजना बंद हुई पुगल बा। असो करके गंडकी सहित के लुम्बिनी मधेसो कर्णाली प्रदेश के प्रसारण तथा वितरण संचालन माफे समेत अवरूद्ध बनल बा। खास करके काली गंडकी लडिया में पानी के बहाव बढ़लक कारण प्रसारण लाइन विच्छेद हुईलक सुरक्षा के लक समेत आयोजना बंद करे परल। अटवार के करीब 1000 मेगावाट समके विद्युत उत्पादन में अवरूद्ध हुई पुगल नेपाल विद्युत प्राधिकरण से जनाइल बा। प्राप्त पाचक विवरण अनुसार बाघ के कारण मुख्य रूप में समेत 220 केवी क्षमता के काली गंडकी कोरिडोर प्रसारण लाइन अवरूद्ध होके ऊ प्रसारण लाइन मार्फत प्रवाह हुई 13 समेत उत्पादन केन्द्र के लक्ष्य में 358 मेगावाट विद्युत उत्पादन बंद करगिल प्राधिकरण से जनाइल बा। ई बाहेक के म्याग्दी की स्याङ्जा कास्की ओस्तक लमजुङ तनहू में समेत रलक थप 14 उत्पादन केन्द्र के करीब 630 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन केन्द्र में समेत लडियाक में अत्याधिक बहाव के कारण बंद हुई पुगल बतागिल बा। करके समग्र समेत करीब 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरूद्ध हुई पुगल नेपाल विद्युत प्राधिकरण से जनाइल बा। काली गंडकी के बाढ़ के कुछ दिन पहले केल समेत उत्पादन शुरू करलक राहुघाट जल विद्युत आयोजना के समेत स्विच यार्ड में समेत क्षति पुगल बा। काली गंडकी कोरिडोर में 220 केवी प्रसारण लाइन अंतर्गत के म्याग्दी के दाना से लेकर पर्वत के कुसुम मासम के खंड में समेत टावर नंबर 2122 में क्षति पुगल प्राधिकरण से जनाइल बा। ओसक बुटवल कुसमा समेत लौवा खण्डमा प्रसारण आयलमा बाकलसे बाढ़ के जोखिम के कारण काली गण्डकी उपरक माडी सुपर माडी उसक नामार्जुन माडी उसक सेती नदी अपार उसक डोर्दी उपरक समेत मर्स्याङ्दी मध्य मर्स्याङ्दी मर्स्याङ्दी मोदी लगायत की जल विद्युत केन्द्र के उत्पादन सुरक्षा के लाग बंद करगिल बाकलसे प्राधिकरण के प्रवक्ता राजन ढकाल के अनुसार ई प्रसारण लाइट मरमत करना कुछ दिन लगना हो अन्य संभावित स्थान में समेत टोली परिचालन हो जनासेकल बा। जानकी गाउँपालिका के कृषि हाट बजार में समेत कृषक उकरण के कृषि उत्पादन है बजारीकरण करना सहज हुए कह कि दुर्गौली कृषि हाट बजार संचालन करते आयल बा। कृषि हाट बजार संचालन आयल पाछे कृषक उपभोक्ता दोनों जहां फायदा पुग्न बतागिल बा। गाउँपालिका के कृषक उकरण से उत्पादन करल कृषि उपज बिक्री हुए कहना समेत दुर्गौलीमा हप्तामा दुई दिन आइतबार हो बिहिबार के हाट बजार संचालन गर्न निर्णय गरल्बा। वे अनुसार कृषि हाट बजार मनसे हप्ता के समय दुई दिन संचालन हुई रहल्बा। हाट बजार व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सोमती चौधरी जानकारी करेले बाटी। दुर्गौलीमा कृषि हाट बजार संचालन केलक आयल पाछ कृषक हुकरान आपन बारी के उत्पादन तरकारी बिक्री वितरण गर्न सहज हुइल। किसान खुंकरा खुशी हुई दुर्गौली के किशोरी चौधरी जानकारी दिले बाटे। उसके दुर्गौली के फूलकुमारी चौधरी फे समेत आपन कृषि हाट बजार में लगी जाके आपन बारी में उत्पादन हुई तरकारी बेचे पासे अपना फे सहज हुई बटोले बाटे। फूलकुमारी जस्ते और फे कुसुम चौधरी फे कृषि हाट बजार में उत्पादन हुई तरकारी उबेरना बेचे पाके समेत खुशी हुई बटाइल बाटे। कृषि हाट बजार संचालन नहीं हुके वहां टीकापुर के गांव ठाव मन से दूर से समेत बेचे जाई परे मनो हप्ता में दुई दिन कृषि हाट बजार संचालन में आयल पाछे सहज हुई बटोले बाटे। स्थानीय बंदिया चौधरी फे अपना उत्पादन करल तरकारी स्थानीय कृषि हाट बजार मन से बेचे पायल पाछे खुशी हुई बाटे। गहूं में कृषि हाट बजार संचालन में आयल पाछे किनके खैना उपभोक्ता हुकरा पाछक समय में सहज हुई बटैत आयल बाटे। गांव में उत्पादन हुई ताजा तरकारी किन पायल पाछे उत्पादन करल कृषि हो आप तहां जस्ते उपभोक्ता हुकरन फायदा पुगल। दुर्गौली के महेन्द्र बम बटैल बाटे। भगतपुर के दिनेश थारूफे गांव में हप्ता में दुई दिन कृषि हाट बजार संचालन आयल पाछे अपना हुकरन तरकारी किन्न दूर जय नई पर्ला को ताजा तरकारी किनके लानल बटुटी बाटे। दुर्गौली में 2077 साल से लेके कृषि हाट बजार संचालन अलग हो ऐसी की कृषि हाट बजार संचालन आयल पास कृषक ओ उपभोक्ता हुकरन दोनों जहन फायदाजनक रहल बा। सूचना में विश्वव्यापी पहुंच केलाक अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेपाल में फ्याज तमाम कार्यक्रम करके मनाइती बा। प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 28 के दिन यी दिवस मनाइन चलन बा। सन 2019 अक्टोबर 15 मा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा मनसे 74 सत्र के यी दिवस मनाइन निर्णय गरल के हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनोस्को के सिफारिश मा विश्व लोकतंत्र के लाख सूचना में पहुंच आवश्यकता है ध्यान में धरके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से यह ऐतिहासिक निर्णय करल बताया गया। विश्वभर सूचना के हक है सर्वेत सर्वसाधारण नागरिक हुकरण बीच पुगेना उद्देश्य सहित तमाम कार्यक्रम का आयोजन करके ई दिवस मने लागिल सूचना आयोग से जनायल बा। खोजखर मायगरी विश्राम पास फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये।
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
8: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुटे।

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: विश्राम पाछे फेर स्वागत बा। भारतको उत्तर प्रदेश लगायतमा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 56 जनाको मौत भयो। अधिकारीहरूको बताइबाट भारतकै सबसे ढेर जनसंख्या रलक राज्यमा गएल 3 दिनमा 56 जनाको मौत भयो। 1000 से ढेर घरमा क्षति पुगल। राहत केलक समेत आयुक्त के कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर जनाइल बा। 24 करोड़ से ढेर जनसंख्या रहल उत्तर प्रदेशमा जून से लेकर सेप्टेम्बर सम्म के वार्षिक मनसून याममा समेत वर्षा हो। आंधी बेरी के से समेत बारम्बार असर पर्ति रहल बा। बंगला के खाड़ीमा बनलक न्यूनचापीय प्रणाली के स्थल सतह और समेत सर्ती गैलक क्षेत्रमा वर्षा तीव्र बनाएल पाछे आयल अत्याधिक भारी वर्षा के कारण पाछ समयमा मानवीय क्षति फे समेत हुई विज्ञप्ति से जनाइल बा। ये समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। अविरल वर्षा संगे बाढ़ पहिरो दुभान से देशभर के 21 जन के मौत। बाढ़ पहिरो में 774 के परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित। कमजोर बनती गई न्यूनचापीय प्रणाली वर्षा रोग गिल संगे आज से घाम लगती मौसम बीत के कहाई। भारत के उत्तर प्रदेश में बाढ़ पहिरो में कमती में 56 जन की मौत हो। दुर्गौली में कृषि हाट बजार संचालन हुके कृषक उपभोक्ता होकरण फायदा। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी बिदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीका प्रफम सुनतिर विराम।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ काकना हो बाबा फिर उस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आन्ल से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो ई बुढा लिखने का हुई थी जरम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई ठ कबु पेन्सिल हेरा कई ठ कबु झोले फटा कई ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: था कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगला दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का ट्रस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: आरती ब्यूटी एंड कस्मेटिक मा सौंदर्य र श्रृंगार को लागि विभिन्न ब्रांड का कस्मेटिक सामग्री पाइनु का साथ है थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लर को सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
4: संचालक आरती चौधरी संपर्क नंबर 98624 70483
5: शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुर को सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह का सदस्य हरुलाई यही असोज 10 गते देखि 25 गते सम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वन का सम्पूर्ण सदस्यहरुले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुर 2 राजीपुर कैलाली।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुगर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाली पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
1: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
0: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
1: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
0: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
1: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
0: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
1: सिर्जना सुन चाँदी पसल, बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
2: नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
3: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कुर्ती पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्भिस एल्भिरा ट्रेडर्स सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9811638887।
2: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा फेकल
3: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं न हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई।

0: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट पार्टी गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिले जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
4: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या, यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला, टेन्सनमा भए म त। अब
5: भाइलाई थाहै रहेनछ बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
4: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ, कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
5: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
4: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
6: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी,
5: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: अरेला सुन चांदी पसल में छड़की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेंडल बाला औंठी चंद्रमा कांटा नौगेड़ी जस्ता विभिन्न डिजाइन का गर गहना अर्डर करे अनुसार सुपट मूल्य में बनाइन्छन् एक पटक सेवा करने मौका अवश्य दिनुहोला।
4: अरेला सुन चांदी पसल बलभद्र चौक टीकापुर एलएन मेडिकल अगाड़ी संचालक खुमरा सुनार संपर्क मोबाइल नंबर 9810625347।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
1: काठमाडौँ स्थित घरेलु कामदार का लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोक का लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक, आवश्यक संख्या पुरुष एकजना, महिला एकजना तथा अन्य एकजना। सम्पर्क फोन नम्बर 9541400725। इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
2: एल्विस एल्विरा टेरसमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा र थानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
3: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 9811638887।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। सम्पर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: काकी
1: का कहतो भैया
0: अच्छा नेता घर कहाँ बटी
2: दादू कहाँ समझी ना हो
3: पहलमानपुर से मनो भाई
0: आगे तुम छोड़ देवी ना
2: बाबू सुनो ना ओकार ना ओकार हुई
1: रितु दीदी

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के सन्झे 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो कन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनौक्राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुन्टी रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गाउँपालिका यही वर्ष किसानहना मासुमा आत्मनिर्भर बनाएकला पाड़ा प्रवर्धन कार्यक्रम करना किसानहना तत्काल राहत के व्यवस्था कर लद्या नियन्त्रण के लागि दीर्घकालीन योजना बनाकर काम कर कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 के सांसद हुकन के सरकार से माग बाढ़ी पहिरो पीड़ित के उद्धार और राहत में नजुट प्रतिनिधि सभा में सांसद हुकर करल माग ओ धनगढ़ी से बेपत्ता हुई 15 बजे किशोर भेटा गिल जानकी गाउँपालिका किसानहना मासुमा आत्मनिर्भर बनाएकला यह वर्ष भैंसी के पाड़ा प्रवर्धन कार्यक्रम करना हुईलवा पाड़ा प्रवर्धन कार्यक्रम के लागि पालिका पशु सेवा शाखा मार्फत 5 लाख बजेट विनियोजन करलक पशु सेवा शाखा के प्रमुख सन्तोष मल्लिक जानकारी देलाबाट याकरसँग जानकी गाउँपालिका से चालू आवमन पशु सेवा शाखा मार्फत संचालन कर्जिना कार्यक्रम रेबिस भ्याक्सिन निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर औषधि वितरण लगायत के सामान्यीकरण तर्फ के कार्यक्रम रहलबा कलसे सशर्त उहर कृत्रिम गर्भाधान ओ महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम रहलबा पाचक समय कृषक हुक्र पल्लक पशुकन में विभिन्न किसिम के रोग देखापना व संक्रमण हुईना समस्या देखगिलक उहरसे गाउँपालिका पशु ओडा प्राविधिक निरहलक ओडा में निःशुल्क रूप में पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन करना हुआ पालिका विगत मन कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम करल जस्त यह वर्ष फिर निरंतरता दिलबा वस्तकन पालिका पाचक समय पशुपालक कृषक हुक्र अत्यधिक रूप में भिटामिन के नाव मन दवाई के प्रयोग करती रहलक उहरसे यी संबंधी पालिका सचेतना के कार्यक्रम फिर संचालन करती रहलबा प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में विभिन्न छठो विधेयक प्रस्तुत हुईलबा बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उहर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोभिता गौतम कुश नेपाल एनके व्यवस्था जगैना विधेयक 2083 प्रस्तुत कलबाट वस्तक महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक को सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता बादी महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक को सामाजिक सुरक्षा संबंधी कुश नेपाल एन संशोधन करना विधेयक 2083 सभा में प्रस्तुत कलबाट बैठक में स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा महतो दाई के दूधन प्रतिस्पादन करना वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक 2083 व सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पहिल संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत कलबाट वस्तक मन्त्री मेहता स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था के सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2083 व राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083 सभामा प्रस्तुत कलखिट बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल हिमाल मन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी तिर्सुली विपद सम्बन्धी संसदीय विषय समिति के सभापति के निर्वाचन के लाग यह असोज 14 गते दिन का 2 बजे समय तो गिलक जानकारी देलबाट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद करिश्मा कठरिया नेपाल के कृषि क्षेत्र भोक्ती ऐलक मल के अभाव और हाल के बाढ़ी पहरो से पुगा गिलक क्षति प्रति चिंता व्यक्त करती सरकार के ध्यान आकर्षण करैलाबाट आज के प्रतिनिधि सभा बैठक में विशेष समय लेकर बोलती वहां सरकारी व्यवस्था व प्राकृतिक विपत्ति के दोहरो मार में किसान पिसल गिलक बटोईटी तत्काल राहत व व्यवस्थापन के मांग करलबाट सांसद कठरिया हरेक वर्ष असार महीना में किसान मल के हाहाकार व्यवहार पर्ना नियति दोहरीती रलक बटोईटी सरकार के कार्यशैली पर प्रश्न समेत उठैलेबाट वहां किसान दुख करके उत्पादन कलक धान बिक्री कर समेत कठिनाई भोक्ती रलक वर्षे स्थानीय तह हुकन से प्रत्यक्ष समन्वय करते तत्काल प्रभावकारी रूप में धान खरीद के प्रक्रिया आग बढ़ाई ओ किसान राहत प्रदान कर सरकार से माग करलबाट और सांसद कोमल गेवाली क्षेत्र नम्बर 1 मन हरेक वर्ष बरसात के समय में नदी कटान तथा बाढ़ी से नागरिक हुकन समस्या पर्ना करलक कारण आबके सरकार लद्या व्यवस्थापन के लागि दीर्घकालीन योजना बनाकर काम कर सरकार से माग करलबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछु भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड्न नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
2: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
4: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
3: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
4: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
3: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
4: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
5: के तपाईलाई थाहा छ,
6: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
5: हो र?
6: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
5: अनि
6: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
5: के छ त विकल्प?
6: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
5: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
6: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
5: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
6: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा, टिकापुर कैलाली।
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
7: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
8: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
7: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
7: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
8: ईसीजी सेवा,
7: डिजिटल एक्सरे सेवा
8: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
7: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, टिकापुर, जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। प्रतिनिधि सभाकै आजकै बैठकमा सांसद ठुक्र यही असोज 8 गते से 11 गते सम्मकै निरन्तर के वर्षाकै कारण अहिलेक बाढ़ी पहिरो डुबानसे मुलुकमन भाडे जनधनके क्षति पुगैल, कुँवरसे तत्काल राहत उद्धार हो, अस्थायी व्यवस्थापन के काम अविलम्ब कर सरकार के ध्यान आकर्षण करैलबाट। सांसद ठुक्र बाढ़ी पहिरो मन पर्कन 21 जनाके ज्यान गैलक, 5 जना बेपट्टा, 5 जना घाइते हुइलक, ओ संयौं परिवार घरबार विहीन हुइलक प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करैती। बेपत्ता हुकन के खोजी, घाइते के उपचार, ओ विस्थापित हुकन उचित क्षतिपूर्ति के संग सुरक्षित व्यवस्थापन कल माग कलबाट। सांसद हुक्र बाढ़ी पहिरो ओ डुबानसे हुइलक क्षति के जिल्लागत यथार्थ विवरण सार्वजनिक कर सरकार से माग करती। विपद से जोरगिलक समस्या समाधान के लागि अलग कानून आवश्यक रहलक बटुइलबाट। वर्षाकी संग काली गण्डकीमा ऐलक बाढ़ी के कारण गण्डकी प्रदेश के 11 ठो जिल्लामा भारी क्षति पुग्लक, मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा अवरूद्ध हुइबेर एक जिल्ला से अरू जिल्लाकी यातायात सेवा अवरूद्ध हुइला कुर्से तत्काल समस्या समाधानकी लागि पहल गर माग कलबाट सांसद हुक्र सरकार पूर्वाग्रह के आधारमा नागरिक हुक्र पक्राउ कना कार्य कानून विपरीत रहलक बटोइटी वाकर उहर गम्भीर उहरफे ध्यानाकर्षण करैलाबाट सांसद हुक्र बाढ़ी पहिरोले क्षति पुगा गिलक जिल्ला हुकनमन विद्युत तथा संचार सेवा सुचारू करपना सड़क पूर्वाधार के मरम्मत तथा पुल के पुनः निर्माण में तीव्रता दिएपना बजार महंगी तथा कालो बजारी नियंत्रण करपना सरकार और सदन प्रति नागरिक में डेगिलक निराशा प्रति गंभीर बनपना लगायत के विषय में सरकार के ध्यानाकर्षण करेलबाट धनगढ़ी से आईतवार संज्ञाथी से बेपत्ता हुईलक 15 वर्षीय चंद्र एन फेला परलबाट धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 5 हसनपुर के एरे आईतवार संध्या करीब 6:30 बजे घर से निकरल पाछ परिवार के संपर्क में आयल निरल वहां ऐश्वरी विद्या निकेतन मन कक्षा 10 अध्ययनरत विद्यार्थी हुई परिवार खोजी के लागि प्रहरी तथा संबंधित निकाय जानकारी करैल रह खोजी के क्रम में एरे फेला पलक परिवार से जनागिल बा शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल से नेपाल के लागि रूसी राजदूत एलेक्सी भ्लाडिमिरोविक शिष्टाचार भेटवार्ता कलबाट सिंहदरबार स्थित शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के आजुलक भेटमन नेपाल और रूसी बीच के द्विपक्षीय संबंध तथा आपसी हित के विषय में छलफल हुई रह भेटमन शिक्षा खेलकूद जनशक्ति विकास लगायत के क्षेत्र में दुई देश बीच के सहकार विस्तार करना विषय में छलफल हुईलक मंत्री पोखरेल के सचिवालय से जनागिलमा ऊ अवसरमा मंत्री पोखरेल नेपाल के जनशक्ति विकास मन रूस सरकार पुगैटी ऐलक योगदान और सहयोग प्रति धन्यवाद व्यक्त कलबाट वहां शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में नेपाल रूस बीच के सहकार्य थप विस्तार कर अपनामन जोर देलबाट राजदूत नेपाल के शिक्षा तथा खेलकूद क्षेत्र में लगानी कर रूस इच्छुक रहलक बटुलबाट वहां यी क्षेत्र मन सहकार्य के लागि लौ संभावना पहलैटी दुई देश बीच के सम्बन्ध आमीन सुदृढ बनाई सेक्ना धारणा व्यक्त कलबाट खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछैनिनी बाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
9: नेपालगंज मेडिकल कलेज कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
10: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिवार का दिन
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
9: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
11: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
10: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजे बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80008 र 9825 6777 72।
13: घर कहिया सिर्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सिक्ल
14: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
13: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
15: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
16: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली
14: प्रोपराइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नम्बर 9848541436।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कञ्चनपुरके पश्चिमी गड्ढा चौकी नाका हो नेपाल भारत आगमन आस्थेसे सहज हुइल्बा। लगातारके वर्षाके कारण महाकाली लद्यामा पानीके बहाव 1,00,000 क्यासेक पार करलपा छ। दुई दिन थेसे शारदा ब्यारेज बनबासा पुलमन चारपाङ्दे सवारी साधन आगमनमा रोक लगागिल रह। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरके प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर राउत आज बिहान महाकाली लड्डेमा पानीके बहाव घटलके सँग बनबासा पुल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुइलक जानकारी गराइलबाट प्रहरीके अनुसार अब पानीके बहाव 98,000 क्यासेक मापन करगिलबा। भारतीय पक्ष 1,00,000 क्युसेक बहाव नाङ्गलपा छ। पुल जीर्ण हुइलक कारण देखैती भारी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगैती आयल रह। कञ्चनपुरके महेन्द्रनगर से काठमाडौँ पोखरा लगायत ठाउँके लागि आस्थेसे यातायात सेवा सञ्चालन हुइलक महाकाली बहुद्देश्य यातायात कम्पनी प्रणालीकी अध्यक्ष नवीन भट्ट जानकारी देलबाट। वर्षाके कारण काठमाडौँके यात्रुवाहक बस 4 दिन थेसे ओ सुदूरपश्चिमके पहाड़ी जिल्लामा 3 दिन थेसे यातायात बन्द कैगिल रह। अध्यक्ष कल मौसममा सुधार आयलसँग यातायात सेवा फे आस्थेसे सुचारू हो सेक्लबा। असोज 9 गते थेसेकी अविरल वर्षा व बाढ़ी पहिरोके कारण देशके विभिन्न क्षेत्रके विद्युतीय संरचनामा भारी क्षति पुगलबा। बाढ़ीके कारण कुस्मा दाना तिर्सुली मर्स्याङ्दी सेतीमाडी कालीगण्डकी तथा समुद्र टार लगायतके क्षेत्रमा नकैकन कुल 1,292 मेगावाट क्षमताके जलविद्युत आयोजना प्रभावित हुई पुग्लखुइट। प्रसारण लाइन उहर कालीगण्डकी करिडोरके 220 केवी प्रसारण लाइन अन्तर्गत म्याग्दीके डाना कुस्मा खण्डके टावर नम्बर 2122 क्षति पुगलबा। यी 60 जलविद्युत केन्द्रके 190 मेगावाट विद्युत प्रसारण अवरूद्ध हुई पुगलबा। सड़क अवरूद्ध हुइलके कारण प्रसारण लाइनके विस्तृत निरीक्षण ओ मर्मतमा कठिनाई भिटिरलक नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकारी देलबा। वस्तक नेपाल विद्युत प्राधिकरणके सहायक कम्पनी से प्रवर्धित राहु घाट जलविद्युत आयोजनाके टेलरेस गेट डक्ट ओ टर्बाइनल फ्लोरमा पानी फस्ल कोर्से मर्मतकै सञ्चालनमा लान करिब 10 दिन लग्ना देखागिल्बा। यसै आग भटौ 10 गते भोटेकोसी ओ तिर्सुली लडेक बहावसे पारिसे माटिक तिर्सुली 3,220 केवी हब तथा विभिन्न आयोजनामा क्षति पुगाइबे 430 मेगावाट प्रणाली से बाहेर रहलक तथा वहाँ प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीकनके करिब 74 अर्ब रूपियाँ बराबरके क्षति पुग्लक प्रारम्भिक अनुमान कैगिल्बा। अवरोध मध्ये सेतीमादी करिडोरके 262 मेगावाट मर्स्याङ्दी करिडोरके 190 मेगावाटके आयोजना पुनः सञ्चालनमा आशाकल बाकलसे 144 मेगावाट क्षमताके कालीगण्डकी ए आज सन्ध्या सञ्चालनमा नैतिबा। वितरणतर्फ वर्षा रोगिलके सँग म्याग्दी बागलुङ तनहु ओ रूकुम पूर्वमन विद्युत आपूर्ति सुचारू होस्याकल्बा। मुस्ताङ प्युठान ओ रोल्पामा आज अपराह्नसम्म तथा मनाङमा कालसम्म विद्युत सञ्चालन गर्नकै प्राधिकरण कार्यक्षेत्रमा खटलबाट। यस समाचारके सँग खोज खबर उराइल अन्तिम जति जति खबरके मुख्य शीर्षक फेरसे। जानकी गाउँपालिका यही वर्ष किसानहना मासुमना आत्मनिर्भर बनाएक लागि पाड़ा बरवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै किसानहना तत्काल राहतके व्यवस्था गर ओ लद्या नियन्त्रणके लागि दीर्घकालीन योजना बनाएका काम गर कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 सांसद हुकनके सरकार से माग। बाढ़ी पहिरो पीड़ितके उद्धार तथा राहत मजुट प्रतिनिधि सभामा सांसद हुक्र कर्ला माग। ओ धनगढ़ी से बेपत्ता हुईलक 15 वर्षीय किशोर फेला पर्ल। लिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सिक्बी। आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती। मैं गीता फी विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीका पूरे फिल्म सुनती रवि राम राम।
16: लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
4: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्दा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
16: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
17: पढाइ छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: हो सानी, कहाँ जाए तू सिरबुट लगाए के कहो न कहो।
1: मैटो जाए तो बाजार, तू सुलान देख परी।

0: सामी आज बजार से मोल सजी सजावट चिलड़ी नांदो जी से मैं अपन शरीर की सिंगार सौगार चढ़े को
1: ठीक है बा तू चिंता ना करो

0: बुका पी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आदि था कहा कना हो कहा कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।